कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

हमारी सभी सुनवालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनवालों, सोमवार का दिन है, 21 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालों को शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार बीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनवालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। 7:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वेटेड हो चुका है। मानदाह 21 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शुभ दिन एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को, सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम देख रहे हैं बहुत से सुनने वालों हैं जो इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा श्री कृष्ण भजन आप सभी सुने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और अपना डाक हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र आप जाकर देख सकते हैं इसी वेबसाइट पर। और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हरिओम शरण जी के आवास में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। हरिओम शरण जी के आवास में ये

रेडियो वेव्स में इसके जरिए सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। रेडियो एसबीएस की सरिये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों जो रेडियो एसबीएस का ऐप पर ऐप किया है, खुद मोर गुड मॉर्निंग कहा है, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। सभी सुनने वालों जो रेडियो एसबीएस का ऐप पर भी ऐप किया है, अरोरा की आवाज में सुंदर भजन पेश किया जा रहा है आज की सोमवार की सुबह की।

देवशीष दास गुप्ता जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गई फिल्म खानदान, उसी फिल्म का ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। आम्स्टरडम साइटोस में श्रीमती बेया हमारा भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं और ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं तुलसी कुमार की आवाज में, कभी राम बन के कभी श्याम बन के।

तुलसी कुमार के आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गए आमस्टरडम सांटोस की रहने वाली श्रीमती बेया। ये सुंदर भजन बस सुनना चाहते थे आज के प्रोग्राम में और इसी तरह से पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार सुंदर सा शिव जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

विनोद राठौड़ की आवाज पे ये सुंदर शिव जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर जी की आवाज में अपनी बार ये सुंदर सा

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन पेश की गए। सुन वालों, आहिस्ता आहिस्ता भजन यात्रा प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। चले प्रोग्राम में हरिओम शरण जी की आवाज में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक भजन और होगा, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी। श्रिया जी की आवाज में फिल्म बनारस, उसी फिल्म का ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और ये सुंदर भजन देनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्खू ने मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

ऐश्वर्या जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। तनहाक शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए। सुन वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। अलका जी की आवाज में एक सुंदर सा शिव जी की आरती आप सुनेंगे और पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का पूरा और पूरा टीम के तरफ से हमारे तरफ से हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुन वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो एसबीएस का ऐप पर ऐप किया है गुड मॉर्निंग कहा है खुद मोर्ख कहा है उन सभी के लिए उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। झूरा मौसम, धूप का मौसम, तो आप सभी सुन वालों को एक खूबसूरत दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हॉलैंड के बीच में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए सुनाई देता है। चलिए प्रोग्राम में अलका एन कुमार सानू जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

विनोद राठौर और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में फिल्म बाजी की ओर। उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति

आशा भोसले और कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 12 मिनट फोर 9 यानी कि 12 मिनट बाकी है सुबह 9 बजे में। अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा सोनू निगम और अलका जी के आवाज में। अखियों से गोली मारे फिल्म का

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सोनू निगम और अलका जी की आवाज में काफी दिनों के बाद ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म अंखियों से गोली मारे फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गीत बस पेश की गई। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक गाना और उसके बाद खबरें, खबरें के बाद तुरंत पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश होगा।

है मांदा 21 सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो एसबीएस का एप नंबर 03-22-66-66-11। हर एक इंफॉर्मेशन जो है फरमाइश के बारे में या तो कोई भी खबर रिक्लाम आपको देना है, हर एक इंफॉर्मेशन ऐप द्वारा भी आप ले सकते हैं। रेडियो एसबीएस का वेबसाइट पर आप जाइए और उसी वेबसाइट के जरिए आप ऐप कर सकते हैं रेडियो एसबीएस।

दूर शहरों में DAB प्लस रेडियो की जरिए सुनाई देता है और खासतौर पर प्रोविंसी साइड होलंड में भी DAB प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनाई देता है। देन हाफ रोटरडम स्कीडम डेल्फ राइसवेग सूतमेर नो दौरप कपेला आन द एसल बारंद्रेख्त नीव कैरक आन द एसल और बहुत से शहरों में प्रोविंसी साउथ होलैंड में ये प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा भी आप सुन सकते हैं अपना मौतगार में अपना घरों में। तो काफी दूर दूर शहरों में ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम भी सुनाई देता है। तो यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं फिल्म अमर अकबर एंटोनी। किशोर कुमार मोहम्मद रफी मुकेश और लता होगा प्रोग्राम में। अमर अकबर एंटोनी फिल्म का नाम। इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में कोई भी गीत सुनना है तो आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं, ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं।

फिल्म का नाम अमर अकबर एंटोनी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस पेश की गए, हमको तुमसे हो गया है प्यार तो क्या करें। गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म अमर अकबर एंटोनी से। 13 मिनटों ओवर 9 स्टूडियो टाइम हो चुका है। मंडा 21 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से वेलकम, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स आप हर एक के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम, लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना।

लता जी की आवाज में गाना बस पेश की गई तुम्हें याद करते करते। काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना यशुदास एंड प्रीति सागर प्रोग्राम में होगा।

नीति सागर और यशुदास की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था आनंद आश्रम। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों को। सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए अपना अपना रिएक्शंस देते हैं। सभी को वेलकम और प्रोग्राम सुनते ही रहना। इंडिया भारत देश नोएडा में अनुरेश भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। वेलकम, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। स्वर्गीय हेमंत कुमार

कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना पेश होगा है फिल्म ऊंचे लोक, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ऊंचे लोक फिल्म का नाम।

0: आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका दख हॉरोस्कोप भी होता है और तरह तरह की खबरें जैसे कि मौसमी समाचार भी होता है जो आप जाकर देख सकते हैं। सुनवालो आपको भी मालूम होना चाहिए कि रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। टिकट के लिए i-tickets.com वेबसाइट पर आप जाइए, उसी वेबसाइट पर अपना टिकट आप खरीद सकते हैं और आपको खबर किया जा रहा है जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए। टिकट इन दिनों काफी जोर तोर से बिक रहा है। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।
1: तेरा दिल दिल से दिल

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 9 मिनट वेटेड हो चुका है, 9:30 बजकर रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से, यूट्रेक्ट शहर से ये प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। यूट्रेक्ट शहर से श्रीमती माखदा नुंदा ने तार किया है और लता जी की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं तो चले फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। यूट्रेक्ट शहर की रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा तार किया है और लता जी की आवाज में एक खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं, तो ये गाना पेश किया जा रहा है फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो है लता जी की आवाज में।

इसी तरह से गाना फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में उत्तराखंड शहर के रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा। श्रीमती माखदा नुंदा ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, हमरा ही फिल्म का नाम होगा। और गाना आपके बार प्रोग्राम में मांग करने वाले हैं स्पेकनेस शहर के रहने वाले हेंद्रक और सीता बसन। हेंद्रक और सीता बसन एक दूजे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना बस पेश कर रहे हैं। और गाना का बोल है वो दिन याद करो, फिल्म का नाम हमरा ही है।

पुरानी फिल्म हमरा ही, उसी फिल्म का गाना पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। स्पाइकनेस शहर का रहने वाला, या कहिए स्पाइकनेस शहर के रहने वाले हेंद्रक और सीता बसंत, हेंद्रक और सीता बसंत एक दूजे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 10 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में। रोटरडम शहर से प्रदीप ने तार किया है और प्रदीप काफी दिनों के बाद तार किया है और कहा कि हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, लेकिन आज घर पर है, छुट्टी पर है और सोचा चले गाना आज की प्रोग्राम में हम मांग करें। तो रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप मोहम्मद रफी की आवाज में गाना मांग किया है, फिल्म हसीना मान जाएगी। चले थे।

गाना आज के प्रोग्राम में जो पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हसीना मांग जाएगी फिल्म का नाम था, चले थे साथ मिलकर। पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। और गाना को मांग करने वाला था रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप। प्रदीप ने तार किया और ये खूबसूरत गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। एक गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जाएगा अब की बार दमाईटी मुकेश की आवाज में, और ये गाना फरमाइश के रूप में बस पेश किया जा रहा है और मांग करने वाली है उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती मखदा नंदा अपने प्यारा प्यारा दामाद के लिए। उत्तराखंड शहर का रहने वाली श्रीमती मखदा नंदा अपने प्यारा प्यारा दामाद के लिए ये गाना बस मांग किया है आज के प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी सुन वालों की सेवा में। और फिल्म का नाम होगा प्यार का सागर। उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना छोटे खान ये खास गाना मांग किया है सोमवन स्पेशल के लिए ये गाना बस मांग किया है आज के प्रोग्राम में। प्यार का सागर फिल्म का नाम।

आशा जी की आवाज में फिल्म प्यार का सागर, उसी फिल्म का गाना पेश की गई, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना छोटे खान गाना मांग किया सोम ओम स्पेशल के लिए। बड़ी प्यार के साथ ये गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में अपने सोम ओम स्पेशल के लिए, और वो भी रोटरडम शहर के रहने वाली सबीना छोटे खान। शुक्रिया, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। उसी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं तार द्वारा, बहुत से रिएक्शन आते हैं सुनने वालों, रेडियो SBS का ऐप की जरिए भी तार कर रहे हैं, ऐप भी कर रहे हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम रोजाना बहुत से सुनने वालों बस सुनते हैं और इसलिए ये प्रोग्राम रोजाना भी पेश किया जा रहा है। हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुनने वालों बस ये प्रोग्राम को सुनते हैं, न सिर्फ हॉलैंड देश के अंदर में लेकिन हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी सुनने वालों जो टूट से यहाँ पर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया भारत देश नोएडा, वहां से अरुणेश एक खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, स्वर्गीय हेमंत कुमार और आशा जी की आवाज में। तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं, इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश ये खास गीत को मांग किया है आज की प्रोग्राम में।

आशा जी की आवाज में संबंध फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। और ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश। अरुणेश ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 8 मिनट बाकी है सुबह 10:30 में हॉलैंडीज के अंदर, और बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप निकला हुआ है। और इस मौसम में रेडियो SBS का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं। सुनने वालों, आपकी हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का तार की नंबर है 0-35-65-65-60। फरमाइशों हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन इसी तार की नंबर पर 24 घंटा लगातार आप ले सकते हैं। 24 घंटा लगातार भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं, और वो भी रेडियो SBS का वेबसाइट पर आप जाइए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट पर, और उसी वेबसाइट के जरिए मेल और ऐप भी आप कीजिए। सभी कामों काज सस्ती दामों में आपकी फरमाई से 5 यूरो पर फरमाइश, और तमाम खबरें तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में। जरूर एक बार इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फो लीजिए। हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं अमित सिवदत्त। शुभ दिन आपको भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से, और अच्छी से मन लगाकर बस काम करना। अल्फन अंदरहीन शहर में आदरी और ग्रेस भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। आदरी एन ग्रेस, ओक एन हेले मोये दाग, सोनिगे दाग। और आदरी और ग्रेस एक खास गाना मांग किया है, फिल्म का नाम मॉडर्न इंडिया, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। गाना बस एक दूजे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे हैं।

पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते हैं। सभी को वेलकम। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है। बाहर की ओर हम देख रहे हैं तो धूप ही धूप निकला हुआ है। आज की प्रोग्राम में हमने आपको मौका दिया गाना मांग करने के लिए। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी फिल्म का गीत आप मांग कर सकते हैं। इस खास प्रोग्राम में जो रोजाना आपके लिए पेश किया जा रहा है और कभी कभी प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में आपको मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म चिराग उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश होगा। फोर्ट बेरख शहर की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। फोर्ट बेरोक शहर की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सोनिया शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। असर उम्मीद है कि फोर्ट बेरोक शहर में धूप का मौसम है जिस तरह से यहाँ यूट्रेक्ट शहर के अंदर में है। गाना फिल्म तीसरी कसम उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। मुकेश जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा है। यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर एक गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में। सजन रे झूठ मत बोलो माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस पेश किया जा रहा है फिल्म तीसरी कसम।

0: जाना है।
1: द माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म तीसरी कसम, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास बस जाना है। उत्तरा शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर, ये खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है, रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम आहोय RTM स्टेज में। अपना टिकट आप जाकर खरीदिए i-tickets.com वेबसाइट पर, टिकट जो इन दिनों काफी जोर तोड़ से बिक रहा है। तो रविवार 15 तारीख नवंबर मिलकर देखेंगे उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रागा इवेंट्स वेबसाइट पर। उत्तराखंड लाइचरेन का रहने वाला राजन गिरधारी, काफी सालों से हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में एक प्यार भरी गाना मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में, उत्तराखंड लाइचरेन का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म आराधना।

लाइट्स रंगा रहने वाला राजन गिरधारी है। राजन गिरधारी का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस वक्त 12 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। गाना जो अब की बार पेश होगा फिल्म का नाम डोली। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले की आवाज में गाना आप सुनेंगे और खौडा की रहने वाली रीमा आज की प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है, तो चले रीमा की मांगी हुई गाना को सुनते हैं।

आशा जी की आवाज में फिल्म डोली, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। खौदा शहर की रहने वाली रीमा की मांगी हुई गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आज के प्रोग्राम में बहुत सी सुनने वालों बस तार किया अपना अपना गाना मांग करने के लिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना पेश होगा और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। अब इसे बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया, लेकिन समय होने के कारण आप लोगों के गीत नहीं पेश हुआ है। कोशिश कीजिए आने वाले प्रोग्राम में जब भी हम आपको मौका देंगे गाना मांग करने के लिए, पूरा समय पर तार करने के लिए, आखिरी समय पर सुनने वालों बस ऐप द्वारा तार कर रहे हैं, स्टूडियो का टेलीफोन पर तार पर तार कर रहे हैं, जबकि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पर आ रहा है। अब चलते हैं आज के प्रोग्राम में हुल्फर्सुम शहर की ओर और वहां पर नीला हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और खबर किया है कि काफी सालों से सुनते हैं, लेकिन आज कोशिश किया स्टूडियो की ओर तार करने के लिए गाना मांग करने के लिए। तो लता जी की आवाज में गाना मांग किया है, फिल्म का नाम फर्स। हुल्फर्सुम शहर की रहने वाली मीला की मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है।

0: नेता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म फर्ज का गीत अभी आपने सुना। हिलफुरसुम शहर की रहने वाली मीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना, प्रोग्राम में भाग लेते ही रहना। सुनने वालों कल मंगलवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तार किया और गाना मांग किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ दिया है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: तुम पास आए, यूं मुस्कुराए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स बड़े मियाँ छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट। उदित नारायण एंड आदित्य नारायण,
2: तेरी नजर।
3: Father and son, samen, live op het podium. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische Bollywood hits. Prachtige muziek en entertainment van topniveau. Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy, RTM Stage. 2 generaties, 1 podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Bare Mia Chote Mia live in concert. Udit Narain en Aditya Narain. Voor meer info

प्यार करके देखो ना, बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है और रेडियो SBS पर काफी प्यार भरी गाने पेश किए।

फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में अभिजीत और अलका जी की आवाज में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-262-6611 इसी तार ही नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप

फिल्म प्यार का साया उसी फिल्म से कुमार सानू एंड आश जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है और बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। दे आबे प्लस रेडियो के जरिए अपना घरों में मौतकार में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ होलैंड में। शिकवा नहीं किसी से एक बार फिर से द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू।

द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। एक गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं उदित नारायण के आवाज में, फिल्म का नाम दीदार। और एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है कि उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रविवार सोमवार 15 नवंबर, रविवार 15 तारीख नवंबर रोथडाम आहुई में। अपना टिकट के लिए वेबसाइट i-tickets.com उसी वेबसाइट पर जाइए और अपना टिकट को खरीदिए। और रविवार 15 तारीख नवंबर देखिए उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है और वो भी रागा इवेंट्स वेबसाइट पर। तो चले उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, द मूवी दीदार।

प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म दुल्हन बनू मैं तेरी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 4:12 स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोमवार का दिन 21 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं। उदित नारायण और अलका।

शहर यूट्रेक्ट से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में एक गाना और होगा, उसके बाद खबरें आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश होगा। एक बार फिर से उदित नारायण एनाल का।

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो वेस भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर आज की इस प्रोग्राम में। लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में।

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

ने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। क्यों?

सनम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में गाना

पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत से सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त।

रेडियो SBS के जरिए अलका एंड कमल खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सभी सुनने वालों की सेवा भी। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म दौलत, उसी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। हम आपको ले चलेंगे आज की प्रोग्राम में हमरास फिल्म का गीत की ओर, सॉन्ग बाय महेंद्र कपूर और गाना का बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। एसबीएस पर आपने चुन किया है संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कपूर के आवास में फिल्म हमराज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों बस मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुनते हैं और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, न्यूज, मौसमी समाचार और आपका दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी होता है। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो जाकर अपना दाख हॉरोस्कोप को भी देख रहे हैं अपना ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर रोजाना आपका दाख हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर होता है radio.sbs.nl। जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए इसी वेबसाइट पर। गाना जो अगली बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। मुकेश जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। लागी तुमसे लगन साथी झूठे ना, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

किशोर कुमार की आवाज में ये काफी खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। मिले कहीं कहीं दो अजनबी, सॉन्ग बाय किशोर कुमार। सुनवलो चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी मूवी का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। नहीद के आवाज में गाना को आप सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा

हिट की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई पाकिस्तानी मूवी का गीत, एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। नहीं के बाद हम आपको ले चलेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना का बोल है तुमसा मीत मिला।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0362565566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd. Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-2-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-2-65-65-60. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसके साथ तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दिस प्रachtig liedje is gezongen door Shreya Ghoshal en kwam uit de film The Body. En हमने सुना है इस volgend liedje via Radio SBS uit de film मेरे यार की शादी है, gezongen door Udit Narayan, Alka Yachnik, Sudesh Bhosle en Jasbinder Nerula is dit liedje in het programma गीतों के लहर.

हो गुरनालो इश्क मिठा इस द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर. एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्प गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर. प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग.

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्द फिल्म लगान। एन अर्द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दूर सोनू निगम एंड अलका याचिनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खुशांदोर आरती बर्मन लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार वासदिली चेफिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों की लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 कॉम्स खुशांदोर शान एंड रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस अर्ध फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड अर्ध फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

0: कहना है कुछ तुमसे तुम्हारे कानों में करीबा।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्ता इस het volgende liedje via Radio SBS किस्तों।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.